थैंक यू फॉर द वॉर्म वेलकम एंड मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो हमारे पास जो भी है थोड़ा बहुत वो संगीत ही है और हम स्वामी के चरणों में अर्पित करते हैं। आशा करते हैं स्वामी को और आप सबको पसंद आएगा। बहुत ज्यादा लर्नेड नहीं है, सीखा बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत है मेरे पास मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आज कर पाऊं। आप सबका सहयोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।

हमको नाम संकीर्तन बहुत अच्छे लगे। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले जिंदगी में पहली बार नाम संकीर्तन सुने और मुझे पर्सनली इतने पसंद आए कि हमारे बैंड ने बहुत सारे नाम संकीर्तन तैयार किए, और वो इसलिए तैयार किए कि हमें मालूम है यहां सब लोगों को नाम संकीर्तन आते हैं तो वो साथ में गा सकते हैं, तो अगर सारे लोग साथ में गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ हमें बड़ी खुशी होगी, हमें ऐसा लगेगा कि एक्सेप्टेंस है। तो अगर आप सब साथ दें तो बहुत खुशी होगी। थैंक यू।

रैन गवाई सोए, कूड़ बोल बिख खाया मन मुख चलिया रोए। सिरै उपर जमडंड है दूजे पाए पत खोए, हर नाम कदे ना चेते हो फिर आवन जाना होए। गुरप्रसादी हर मन वसै जमडंड ना लागै कोए, नानक से जे मिल रह कर्म प्राप्त होए पौड़ी। एक अपनी सिफती लाया नो दे सतगुर मत्ती, एक नानो नाओ बख्शियो नो अस्त्र हर सती। पौन पानी बै संतरो हुक्म करह भगती, ए नानो पव अगला पूरी बनत बनती। सब एको हुक्म वरतदा मन्या सुख पाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक कबीर कसौटी राम की झूठा टकै ना कोए, राम कसौटी सो सह जो मर्जी वा होए। महला तीजा क्यों करे हो?